अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगें पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: कैकई नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्री गोविंद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुंती पुत्र स्वाभाविक प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपकी सतत सेवा करने वाले व अव्यक्त स्वरूप के उपासकों में कौन अधिक योगविद है। श्री भगवान इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि युक्ततम व्यक्ति वो है जो दिव्य श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। हालांकि सर्व जीव कल्याणरत मेरे अप्रकट स्वरूप के उपासक भी अंततः मुझे प्राप्त होते हैं, परंतु यह पथ अत्यधिक क्लेशयुक्त है।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन केरे दरा बार हो माय माई देवन केरे दरा बार हो मार जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दरा बार हो माय कुन देवता के रचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय माई नर बदिया के रचय बिहद्रा सोन बिहाय लय जाय हो माय माई सोन बिहाय लय जाय।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुमारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में, जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: इतना लसुन के माइनर बदिया पाँव पै जनिया जो दे हो माय पाँव पै जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेल खंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है।
3: जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
1: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियाँ हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र।

0: सोन।
1: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय शोणभद्राय ते नमः। मेकलोद्भवाय बृहते सर्वपापहराय च।
2: ये है आग्नेय पुराण वर्णित शोण महात्म्य का शुभारंभ। शोणभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
0: किंतु इस महाप्रतापी शोण को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
3: नीचे लुप्त हो जाता है।
0: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
4: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे। 4 बजे संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था। उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
2: सोनमुड़ा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
5: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर ज़िले में पिंडरा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा। पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहाँ सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफ़ी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के

0: सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
1: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला, और आगे जाकर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसी आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है, जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
2: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
0: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधे जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्रीपद दीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधे के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभयारण्य का गठन किया गया। ये सन 82 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसैन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरिक गाथा का जन्म भी

0: आपके लिए बहुत प्रसिद्ध है।
1: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरिक गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: लीलार कहें कि आज इतना नौका नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मक के डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोलदहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं,

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाएं जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयले की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाई, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजना यहाँ पे लगाई गई, वो खनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियाँ पुराने लोगों के हृदय को अब भी कांपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में,
3: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरणवाह, बैल को हमारे बैल को हरणवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है, बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है, सोन का ही दूसरा नाम है। हिरण्यवाह बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है।

0: कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह से सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
1: यह सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुराने इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी।
2: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेज़ों ने डेहरी के निकट एक आईनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के, और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं उदयपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
3: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
1: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
3: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
4: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से डेहरी ओन सोन से उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूं होता है, नहर आने से फसल ज़्यादा होने लगा है।
1: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
5: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली थोड़ा बहुत चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है, बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है मरना है हम लोग का।
1: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
6: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ 3 इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, 4थी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं, और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
3: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
1: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
7: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकड़ फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम एमपीपी को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
1: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी

0: फसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना के संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।
1: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगत करने वाली उम्र अभी है और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगत कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
2: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
3: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है, क्योंकि सोन की ढाब से हम लोग पैदे जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
0: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
4: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहाँ हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा, यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
2: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
0: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
5: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं, उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
2: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
6: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
0: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीवशास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
7: ये जो अम्लाई क्षेत्र है, जो मिल वाले हैं, वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे, वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
0: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादात्म्य है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
2: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषेय शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावें
0: कि इसके अंचल में जीवन

केवल लाश की लय में बंधे पाऊँ थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओझ है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि हिमवान पत्नी मेना और पार्वती जी को एक ही समय में एक से स्वप्न आए। दोनों के स्वप्नों में भगवान शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। मेना को शिव एक कुलहीन भभूतधारी श्मशान निवासी के रूप में दिखाई दिए और दूसरी ओर देवी

0: पार्वती के समक्ष वे एक तेजोमय योगी के रूप में प्रकट हुए। मीना चिंतित और पार्वती प्रसन्न थीं। उधर महाप्रभो को तपस्या में लीन पाकर तारकासुर का उत्पात बढ़ने लगा। वो तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। देवताओं के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति अति आवश्यक हो गई। उन्होंने कामदेव और रति को शिव तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। तपस्या भंग होने से क्रोधित महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को ही भस्म कर डाला। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: इसके बाद क्या हुआ सूद जी?
2: शौनक जी, देवी पार्वती का मन आत्मग्लानि से भर उठा। उसमें विरक्ति समाने लगी। उन्होंने शिव आराधना बीच में ही त्याग दी। परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो उठे।
3: विधे, ये तो उचित नहीं हो रहा है। देवी पार्वती के यूं तपस्या त्याग देने से उन्हें शिव प्राप्ति कैसे होगी?
4: और शिव प्राप्ति के बिना पुत्र प्राप्ति भी तो संभव नहीं है।
5: आप दोनों ठीक कहते हैं विष्णुदेव और पुत्र नारद। निष्काम निष्पाप प्रभु के मन में उतरने का एकमात्र मार्ग उनकी आराधना ही है। उन पर किसी अन्य प्रकार का लोभ और मोह कार्य नहीं कर सकता। प्रभु को लोभ है तो अपने भक्तों की समस्या दूर करने का, मोह है तो भक्तों की भक्ति से।
4: नारायण नारायण। और देवी पार्वती के तपस्या त्याग से प्रभु इन दोनों से ही वंचित रह जाएंगे, फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्न कैसे किया जाएगा?
5: पुत्र नारद।
4: आज्ञा परमपिता।
5: देवी पार्वती के मन में तुम्हारे प्रति बहुत सम्मान है। वो तुम्हें अपना गुरु मानती है। वे तुम्हारी आज्ञा कभी नहीं डालेंगी।
4: तो परमपिता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
5: तुम देवी पार्वती के पास जाओ। उनके मन से विरक्ति भाव निकालकर उन्हें पुनः शिव आराधना के लिए प्रेरित करो। इसी में समस्त जगत का कल्याण है पुत्र।
4: नारायण नारायण। जगत कल्याण के लिए मैं तो सदा तत्पर रहता हूं देव। पार्वती शिव के शुभ मिलन के लिए आपके आशीर्वाद से अथक प्रयास करता ही रहूंगा।
3: जाओ भक्त नारद, तुम्हें अपने प्रयास में सफलता प्राप्त हो।
4: नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।
6: प्रणाम मुनि नारद।
4: अरे ये क्या देवी पार्वती, आपकी वाणी में ये कुमलाहट कैसी? और फिर ये तो आपकी पूजा का समय है।
6: मैंने पूजा आराधना त्याग दी है ऋषिवर।
4: त्याग दी है? परंतु क्यों? लक्ष्य के इतने निकट आकर तपस्या त्याग दी?
6: हमें अब कोई लक्ष्य नहीं दिखता ऋषिवर, और लक्ष्य बनाए भी तो किस आशा से? जब देवाधिदेव क्रोध में आकर ब्रह्मा पुत्र कामदेव तक को भस्म कर सकते हैं, तो हम तो एक साधारण मानवी हैं। हमें भस्म करने के लिए उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
4: नारायण नारायण। देवी पार्वती, ये आपने क्या तुलना कर डाली? आप क्यों भूलती हैं, इस साधारण मानवी शरीर में स्वयं शिव प्रिया शिवा का वास है। शिव तो आप पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। अगर होते तो कामदेव के साथ साथ आपके इस मानवीय शरीर को भी भस्म कर डालते।
6: मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझी मुनि श्रेष्ठ।
4: महादेव कामदेव के जिस कर्म से क्रोधित हुए, उसके कर्म फल का पात्र तो आप ही बनती। परंतु महादेव के क्रोध की ज्वाला ने आपको छुआ था नहीं। उनके मन में कुछ तो है।

0: उनकी लीला वही जाने।
1: तो क्या महादेव का हृदय जीत पाना अब भी संभव है?
0: नारायण नारायण, त्याग और तपस्या से क्या संभव नहीं होता देवी पार्वती। आप अपने पिता का घर त्यागिए, गंगोत्री में उसी स्थान पर जाइए जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर पुनः तपस्या आरंभ कीजिए कि आप शिव के अतिरिक्त किसी और का पति रूप में वरण नहीं करेंगी।
1: जो आज्ञा गुरु नारद मुनि। परंतु गुरुदेव, इस बार आप मुझे शिव आराधना के लिए कोई मंत्र दें।
0: अवश्य देवी अवश्य। नमः शिवाय। देवी पार्वती, ये पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों का राजा है। इसके श्रवण मात्र से ही महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं।
1: जैसी आपकी आज्ञा महर्षि नारद।
0: नारायण नारायण।
2: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार देवी पार्वती एक बार फिर शिव आराधना में लीन हो गई। आभूषणों और सुंदर वस्त्रों का त्याग कर उन्होंने वलकल धारण कर लिया। अपनी सखियों जया और विजया के साथ गंगोत्री जा पहुंची।
3: परंतु महाभाग सूची, सुना है वहां की सारी वनस्पति शिव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गई थी। सभी पशु पक्षी भी वो स्थान छोड़ गए थे।
2: शौनक जी, देवी पार्वती और उनकी सखियों ने वहां अनेक सुंदर और पवित्र पौधे लगाए। देखते ही देखते उस प्रदेश में हरियाली लहलहा उठी। सब पशु पक्षी लौट आए और फिर आरंभ हुई ऐसी घनघोर तपस्या जो महामुनियों के लिए भी दुष्कर थी।
1: नहीं माते, और कोई मार्ग नहीं है। एक महातपस्वी का हृदय जीतने के लिए महातपस्या की आवश्यकता होती है। एक विरक्त को पाने के लिए स्वयं विरक्त होना पड़ता है। तो क्या एक कपाली को पाने के लिए कपालनी का वेश धारण करना होता है? हाँ माते, करना होता है। पति परमेश्वर होते हैं, पत्नी को पति के अनुरूप ही स्वयं को ढालना होता है। और फिर सदाशिव तो स्वयं परमेश्वर है।
4: परंतु पुत्री, तू अपने को तो देख, कितनी क्षीण पड़ गई है तू।
1: माते, शरीर अवश्य क्षीण पड़ गया है, परंतु आत्मा बलशाली हो गई है। तपस्या सदा आत्मबल बढ़ाती है माते। और माते, ये आप ही की शिक्षा है कि दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए दुष्कर परिश्रम करना पड़ता है। वही तो मैं कर रही हूं। माते, अपने सुकोमल नारी हृदय को मेरे अभीष्ट मार्ग का अवरोधक ना बनने दें।
4: परंतु पुत्री, वो भगवान
1: वो अवश्य आएंगे माते। वो भक्त वत्सल है, भक्तों को कभी निराश नहीं करते, ये मेरा अटिक विश्वास है। चाहिए माते, निश्चिंत होकर जाइए। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी पुत्री अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो।
5: हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, सफल भव।
1: शिव प्राप्ति के लिए मुझे और उग्र तपस्या करनी होगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।

0: ब्रह्मदेव, विष्णु जी।
1: जी महाप्रभु।
0: इतने चिरकाल पश्चात आपने दर्शन दिए, सब कुशल मंगल तो है
1: देवाजी।

0: परंतु आपका आदेश है, इसलिए विचार व्यक्त करता हूँ। महाप्रभो, आप देवी पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपके औरस पुत्र से तारकासुर का भी नाश हो जाएगा और महादेवी पार्वती की तपस्या भी सार्थक हो जाएगी, जगत का संताप भी मिट जाएगा।
1: परंतु देवगण, देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करते ही त्रिलोकी फिर सकाम हो उठेगी। अभी सब निष्काम भाव से परमार्थ के पथ पर चल रहे हैं, और फिर कामो ही नरकायेव तस्मात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहो मोहाच भ्रंशते तपः। काम से क्रोध होता है, काम से क्रोध, और क्रोध से मोह, और मोह से तपस्या भंग होती है। इसलिए आप सब देवताओं और ऋषियों को काम और क्रोध का त्याग कर जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहना चाहिए।
2: हे भक्तवत्सल महादेव, हम लोग कल्याण के हित में ही तो आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। आपने हमारे ही अनुरोध पर देवी सती से विवाह किया था, इसलिए क्योंकि कुछ भावी असुर मात्र आपके पुत्र के हाथों मारे जा सकते थे। कहो, तारकासुर उनमें से ही एक है।
1: और उस विवाह का परिणाम भी आपने देख लिया था ब्रह्मदेव।
2: महाप्रभु, कहने की धृष्टता कर रहा हूं, परंतु मात्र एक कुपरिणाम सृष्टि का नियम नहीं बन जाता। नियम बनता है सुपरिणाम, जो सबको सुख प्रदान करने वाला होता है। और प्रभु, इस सबका सुपरिणाम यह है कि देवी शिवा ने ही देवी पार्वती के रूप में पुनः अवतार लिया है, मात्र आपके लिए, ताकि आपके द्वारा महाजन कल्याण के कार्य सिद्ध हो। आपका औरस पुत्र सबको इन असुरों से मुक्ति दिलाए।
1: ब्रह्मदेव, विष्णु जी, स्त्री के संग को मैं सबसे बड़ा कुसंग समझता हूं। स्त्री एवं संतान के बंधन में बंधा व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। फिर मैं ठहरा वीतरागी, सन्यासी, मुझे इन बंधनों से क्या लेना देना। परंतु मैं अपने भक्तों को निराश भी नहीं कर सकता, इसलिए उचित अनुचित सभी कार्य करता हूं।
2: महाप्रभु, इसी कारण अयथोचित कर्ता के रूप में आपकी पूजा होती है।
1: मेरे हृदय में विवाह की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी जन कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूंगा। मैं पुत्र उत्पत्ति के लिए गिरिराज पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा। आप सब जाएं, मुझे विचार करने का समय दें।
3: जैसी आज्ञा देवाधिदेव।
4: हम धन्य हुए, महादेव कितने विशाल हृदय के स्वामी हैं।
5: अब हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
4: आइए प्रस्थान कीजिए।
1: मेरी तपस्या के भंग होने का कारण देवी पार्वती की ही तपस्या है, किंतु मुझे उनके तपस्या भाव की परीक्षा लेनी होगी।
6: देवी पार्वती, आपके मुख पर एक बार फिर निराशा की भाव उमड़ आए हैं। क्यों देवी?
7: क्या करूं सखी जया, 3000 वर्ष की इस तपस्या के पश्चात भी मैं अपने आराध्य का मन नहीं जीत पाई हूँ। क्या माते ठीक कहती थी कि शिव पूर्णतः विरक्त हो गए हैं? क्या मुझे उनका संग नहीं मिलेगा?
6: क्यों नहीं मिलेगा देवी, आपकी तपस्या निरर्थक नहीं जा सकती।
7: मन करता है जया, इस अग्नि में देह त्याग कर अपनी यह लीला ही समाप्त कर डालूं।
6: नहीं देवी, धैर्य न त्यागे, प्रभु अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे।
8: भिक्षान देही, भिक्षान देही।
7: देख तो जया, आश्रम में ये कौन तेजस्वी वृद्ध सन्यासी आए हैं, उन्हें आदर के साथ

0: यहाँ आ, अभी लीजिए देवी। आइए मुनिवर, इधर आइए। प्रणाम द्विज श्रेष्ठ।
1: प्रणाम।
0: आसन ग्रहण कीजिए।
1: देवी तुम कौन हो? इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? क्या तुम किसी ऋषि की पत्नी हो जो तुम्हें छोड़ कहीं चला गया है? या तुम स्वयं गायत्री, लक्ष्मी या सरस्वती हो?
0: नहीं मुनि श्रेष्ठ, मैं तीनों में से कोई नहीं हूँ। मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। ते उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मर्षि नारद के आदेश से यहाँ तपस्या कर रही हूँ।
1: देवी, मैं इन सब देवताओं और मुनियों को भली भांति जानता हूँ। और फिर नारद, अरे गिरिजा नंदिनी, आपने किसके कहने में आकर ये तपस्या कर डाली? उनके मन में कुटिलता का वास है, सदा छल कपट करके अपने परमार्थ साधते रहते हैं, अपने मोहक शब्दों से दूसरे को पथभ्रष्ट करते रहते हैं।
0: ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर?
1: नारद सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते रहते हैं। दक्ष पुत्रों को तपस्या के मार्ग पर डाल दिया, और अब आप जैसी सर्वगुण संपन्न देवी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं।
0: मुनि श्रेष्ठ, मैं पर्वतराज की पुत्री हूँ। देवर्षि नारद में भी मेरा विश्वास पत्थर समान कठोर है। वो मेरे गुरु हैं। गुरु कभी अपने शिष्य को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। जो इसमें विश्वास नहीं करते, उन्हें इहलोक और परलोक में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
1: गुरु के प्रति आपकी भावना जान बड़ी प्रसन्नता हुई देवी पार्वती। परंतु क्या आप यह भी जानती हैं कि जिन्हें आप वरना चाहती हैं उनका स्वरूप कैसा है? उनका तुम्हारा क्या मेल?
0: आप क्या कहना चाहते हैं मुनिवर, स्पष्ट करें।
1: देवी, कहां तुम चंद्रमुखी, कहां वो पंचमुख, कहां तुम्हारे हिरणी जैसे बड़े बड़े नेत्र, और कहां वो भयंकर त्रिनेत्रधारी? तुम्हारे शरीर पर दिव्य आभूषण शोभायमान होते हैं, और कहां झुंड के झुंड सर्प शिव के शरीर से लिपटे रहते हैं।
0: मुनिवर,
1: कहां मृदंग की मधुर ध्वनि, कहां डमरू की क्रूर डमडम। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, और वे सदा चिता की भस्म लगाए रहते हैं।
0: और उसी चिता की भस्म के भूमि पर गिरते ही सभी देवता और मानव उसे अपने मस्तक पर लगाने को आतुर हो जाते हैं।
1: वे कुलहीन हैं, जातिहीन हैं।
0: जो स्वयं निर्गुण ब्रह्म हैं, अजन्मे हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है?
1: वे अशिक्षित हैं, उनका कोई गुरु नहीं है।
0: जो भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, उन्हें विद्या से क्या काम? वही तो सबके गुरु हैं।
1: वे निर्धन हैं, उनके पास धन होता तो अर्धनग्न क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, ना उनके पास आवास है ना निवास।
0: विप्रवर, जिनके समक्ष आठों सिद्धियां आकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं, उनके लिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। परंतु वो भोगी नहीं, योगी हैं।
1: देवी पार्वती, छोड़िए ये तर्क वितर्क। शिव आपके योग्य नहीं हैं। मैं आपका विवाह वैभव संपन्न विष्णु, वेद ज्ञाता ब्रह्मा या किसी भी अन्य देवता से करवा सकता हूँ।
0: मुनिवर,
1: वे सदा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।
0: मैंने तो समझा था कि आप कोई ज्ञानी महात्मा हैं, मुझे शिव प्राप्ति का आशीर्वाद देने आए हैं। परंतु आप तो शिव निंदक निकले। तेरी सती भी अपने पति की निंदा सहन नहीं कर सकी और अग्नि में होम हो गई। मैं शिव पत्नी तो ना बन सकी, परंतु उन्हें

0: पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं भी अभी तुरंत इस अग्नि में अपने शरीर का दहन करती हूँ।
1: नहीं,
2: ठहरिए देवी, मेरी बात सुनिए, बहुत तीव्र अग्नि है।
0: देवी पार्वती, देवी अभी क्या कर रही है? देवी, मैं पर्वतराज और माती मैना को क्या उत्तर दूंगी? ये क्या, देवी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई।
1: ये क्या हो गया? लेकिन ये क्या हो रहा है?
0: देवी की अग्नि प्रवेश करते ही अग्नि शीतल पड़ गई। देवी का शरीर स्वर्णिम कांति से प्रकाशित हो उठा है। देवी सकुशल है, देवी सकुशल है, विप्रवर देवी सकुशल है। अरे अरे, ये सन्यासी कहाँ गए? ये सन्यासी तो स्वयं
3: पार्वती, नेत्र खोलो पार्वती।
0: महाप्रभो, भगवान शिव शंकर, मेरी तपस्या सार्थक हुई, सार्थक हुई।
3: पार्वती, मैंने बारंबार हर प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली। तुमसे उत्तम सहधर्मिणी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। आओ पार्वती, कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।
0: नाथ, मेरा अभी आपके साथ चलना संभव नहीं है और ना ही उचित है।
3: ऐसा क्यों पार्वती? हम चिरंतन पति पत्नी हैं, फिर ये बाधा कैसी?
0: बाधा नहीं महाप्रभो, सामाजिक नियम। स्मरण करें, सती रूप में आपने मुझसे शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न नहीं किया था। पिता दक्ष ने भी ग्रहों की पूजा नहीं की थी। इसका परिणाम हमारे समक्ष है।
3: तो आप क्या चाहती हैं देवी?
0: विवाह संपूर्ण वैदिक रीति से संपन्न हो। आप मेरे पिता हिमवान के पास मेरा हाथ मांगने आए, उनकी अनुमति से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे विदा कराकर कैलाश ले चले, तभी मैं आपके साथ चल पाऊंगी।
3: ऐसा ही होगा देवी पार्वती, ऐसा ही होगा।
4: और परम ज्ञानी सूत जी, इस प्रकार देवी पार्वती की कठोर तपस्या सार्थक हुई। देवताओं में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया।
5: हाँ सूत जी, कितने अवरोधों के बाद उनका मनोरथ सिद्ध होने जा रहा था। फिर क्या हुआ सूत जी?
4: सृष्टि का संताप तुरंत समाप्त हो गया। सबने चैन की सांस ली। देवलोक में महाप्रभु के विवाह की चर्चा व्याप्त हो गई। सब प्रसन्नता पूर्वक इस सुघटना की प्रतीक्षा करने लगे।
5: तो विवाह कब और कैसे संपन्न हुआ सूत जी?
4: इतनी शीघ्रता नहीं शौनक जी, देवी पार्वती की इच्छा थी कि विवाह संपूर्ण वैदिक और सामाजिक रीति से पूर्ण हो। सो उसके लिए सबसे पहले प्रभु शिव शंकर को हिमवान के घर जाकर पार्वती जी का हाथ मांगना था।
5: तो महाभाग सूत जी, क्या महाप्रभु ऐसा करने हिमवान के घर गए?
4: परम ज्ञानी सूत जी, इस रहस्य को हम अपनी अगली भेंट तक बचाए रखते हैं।
6: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के 21वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक से ली गई थी।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसो बोरहु तरन, कीजिए घाटा रो। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी।
2: लाओ मेरा तूड़ी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
3: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
2: युद्ध के बाजे बजने दो।
3: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
4: खहरो राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस विक्रह नाहीं। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताहे विमूढ़ा।

0: भरत काशी के स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है। इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
1: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाई।
2: धन्य धन्य धन्य।
0: श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
3: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
0: प्रभो, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी, कायर, मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
1: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवेरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहिं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
3: माँ गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज, चलो चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
1: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनय न कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम, सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: कैकेयी अमंगल मूला, भैसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु कीनी भावरी। ते रात पुने पुने करहि, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए,

0: अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
1: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
2: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन।
3: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
1: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूं मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहां बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
4: कौन आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
5: अच्छा, राम लखन सखी हो ही कि नाही? बै बप्पु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस सम चाली।
6: बेशु न सो सखी सी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा।
5: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं।
6: देखो तो, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज।
5: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
6: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले।
5: सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
1: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलही। उसी समय निषाद राज ने कहा,
0: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
7: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय, सीतापति राम की जय।

0: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं और सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी।
1: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है
2: नाथ? नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
1: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
2: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
1: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक ओर पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
3: स्वामी, क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
1: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
3: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
1: लक्ष्मण,
3: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
1: लक्ष्मण, लेकिन।
3: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजु पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकर आई, तव मारूं रन राम दुहाई।
0: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
1: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मत है तो वह राजमत है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे

0: उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूलकर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
3: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी कोल किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते। सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे, बोले,
2: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
2: राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
3: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय उन भुवन भरत सम भाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
2: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
1: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
3: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं? उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं?
1: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए।

0: मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केचित चेतु।
1: सागर, सागर।
2: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहें नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
3: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
4: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो, वहां मेरा कुछ भी कहना तृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
0: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु वचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा।
4: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
0: किंतु आप मुझे संकट में,
4: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
0: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जेसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
4: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
0: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
4: भाई, यहां मेरी नहीं अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
2: राम और भरत की यह वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है

0: उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
1: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
2: धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य
3: हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हो कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
1: लेकिन मेरा आधार?
3: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
1: नहीं।
3: तब
1: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
3: जैसी तुम्हारी इच्छा।
4: श्री रामचंद्र की जय।

ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता।

0: करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहरकर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज स्वर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनद लजाई। तेहिपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा।

काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्र ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की।

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं? आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने

निश्चरहीन करहु मही, ध्वज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडक वन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहुं नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ। मनु माना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहई कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
3: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
3: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा जो कछु करहीं

0: ही सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
0: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप पड़े हैं, आप ही मुझे।
2: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
1: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
0: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई, चल दूर हो यहां से।
1: देखती हूं, अभी देखती हूं।
2: लक्ष्मण क्या देखते हो?
0: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
1: खर और दूषण, तुम दोनों भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है।
3: आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
1: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
3: तो क्या?
1: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई, जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
3: योद्धाओं, युद्ध का बिगुल बजाओ, जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
2: लक्ष्मण, यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई इस धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना।

0: घन घोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावही पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी छन मह कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
1: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीत

0: तेरी ये दशा?
1: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए?
0: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो, अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
1: तो फिर क्या हुआ?
0: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
1: अरे तू उन बालकों से डर गई?
0: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुखदाता।
1: तू उनका नाम तो बता।
0: शोभा धाम रामस नामा।
1: और?
0: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
1: तो क्या राम ने?
0: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितब भगिनी करी ही परिहासा।
1: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
0: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
1: और खरदूषण?
0: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिशरा को भी मार डाला।
1: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानते? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
2: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलकें नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता मनुष्य नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हठि करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
3: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर।

0: कर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
1: देव,
0: यतिवर,
1: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
0: आपकी कृपा है यतिवर।
1: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
0: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
1: तब क्या प्रेमालाप?
0: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
1: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति शायद तू परिचित नहीं
0: है। यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
1: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
0: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख स्वामी आ गए।
1: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।
0: कमल देवाकर, तुम कहो किस अपराध से मुझे भुला बैठे? देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोसा, सो फल उपायो कि नेवरोसा। स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है, पर वो स्नेह प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए? और गुनायक
4: सीते पुत्री करे से जनित राशा, करिहु जात दान करना था। रे रे दुष्ट, थार की न होई, नरे भय चले सी, न जाने ही मोही।
1: कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ओ, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का

0: परित्याग करेगा।
1: रावण मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सलब कुल तोरा।
0: अरे बूढ़े जटायु ठहर,
2: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुणखानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात, विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात, देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहाँ आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात, इधर देखिए, कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम, अरे राम, अरे ये तो गृधराज जटायु है। तात, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
3: नाथ, दशा नन ये गति कहनी, तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
1: तात, जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
3: ले दक्षिण दिशी गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई।
1: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
3: दरस लागे प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
1: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
3: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है,

0: मलो चन को चर आग राखो देह नात के खाग।
1: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा।
0: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
1: मेरी एक प्रार्थना है, सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कह ही दसानन आई।
2: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगी पर गीध गयो हरि धाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
3: प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या? कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु।
1: देवी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
3: प्रभु, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं प्रभु।
1: देव, मेरी बात सुनिए। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखी अजैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है, वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
3: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
1: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
3: पंपा सरही जाओ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
2: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपा सर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

सज्जन दे गल लगिया लगिया पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगिया लगिया पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सदगुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुखको मुनि वरटे सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइये सदगुरु संगतिया। एक जीव है, एक नाम है, एक है साहिब प्यारा।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा कामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में किंते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।